मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे विभूत थिंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अना

चीन तन पिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो तेती तुमरा लखाना जाय पसारा केह बद सजा प्रथम।

कौं सिमट पयो शंकर एकाठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बतो तपाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरण।

हरि हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविख शकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो

कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी। शरीफ हूँ मैं, देख

और देखते हैं समिन के आपने पर्दे पे क्या क्या भेजा है, किसका पहला पैगाम आया है। पूरे 10 बजे प्यार अली भाटिया, बी थैंकफुल ऑफ योर लाइफ नो मैटर व्हाट, थैंकफुल टू गॉड। ओके, और सोनल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, गुड मॉर्निंग परवीन जी, आई एम एंजॉयिंग लिसनिंग टू योर प्रोग्राम। जी पहला गाना आपने ज़रूर इंजॉय किया होगा सोनल ऑस्ट्रेलिया। और रूपल, हैप्पी मिड वीक टू ऑल द लिसनर्स। वन लाइन, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। मुझे पता है ये किशोर कुमार साहब का है। अच्छा देखते हैं, चिंगारी आपके लिए लेकर आते हैं। और क्या कहती हैं शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, डिड यू नो व्हेन यू स्टैंड एट द जियोग्राफिक साउथ पोल All lines of longitude converge at that exact point. South pole पर एक point है, तमाम जो lines हैं longitude की इधर मिलती हैं. So you are literally standing in all 24 time zones. क्या बात है, you can step from today into yesterday and back to tomorrow. It's the only place on earth you can time travel. अब कौन जाएगा वहाँ, किस किस का सपना भी होगा कि मैं साउथ पोल जाके खड़ा हो जाऊँ। और कराटीना से चिराग पटेल, सना काना बहुत शुक्रिया आपका, अमीर अली राणा, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में नहीं उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद मत कर। बड़ी अच्छी सलाह आपने दी अमीर अली राणा।

0: भरत गंगाराम फ्रॉम लंदन कहते हैं आपका स्वागत करता हूं मैं बेमिसाल अंदाज में दरअसल तमाम लिसनर्स का स्वागत किया है बहुत मेहरबानी आपकी रंजन विनोद कहते हैं कि आई एम बैक आई हैड अ नाइस टाइम आई अटेंडेड जय फेस्टिवल ये जय होगा कोई फेस्टिवल जो आपने नमस्कार परवीन जी मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स और ये जय फेस्टिवल कौन जैन फेस्टिवल ओके ओके अच्छा अब चलते हैं दिनेश और शोभना के पास म्यूजिक इज फूड ऑफ लव एंड हियर वी आर बफेटेड विद सोलफुल म्यूजिक एंड इट्स मैजिक टचिंग अस क्या बात है कहते जादू महसूस होता है पुराने गानों का अगर ना महसूस हो तो फिर ऑनेस्टली फिर कुछ गलत है ओके प्यार अली
1: तुझे जीवन सी डोर से बांध लिया है ये गाना फिल्म असली नकली का है जिसको लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने गाया है और जिसको हसरचे पुरे ने लिखा है और जिसकी धुन सकजे कृष्ण ने बनाई है ये मूवी में देवानंद और साधना थे ये गाना वो दोनों पे फिल्माया गया है
0: क्या बात है साधना की समिन बहुत ही अच्छी अदाकारा थी अब देखें कि सलमा
2: जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता है जो पास उसे संभाल के रखना खोकर वो फिर दोबारा नहीं मिलता शुक्रिया सुबह का प्यारा सलाम सलमा अहमद किसुम
0: और शबीर अहमद फ्रॉम लंदन सलाम भेजा है तमाम लिसनर्स को बेमिसाल अंदाज के सोनल मोदा आपने भी विशेष भेजी हैं चिराग पटेल हाँ उन्होंने मेरी खबर मेरे मुंह से छीन ली है लेकिन मैं नहीं बोलूंगी जब तक मैं खुद अपना ना दूँ चिराग पटेल फ्रॉम कराटीना जो मैंने जिक्र किया था ना समिन वो कहाँ है जो एक आंकड़ा पार कर गई है आबादी वो उसकी खबर चिराग पटेल के पास भी है थैंक यू मिसेस धंजल बेस्ट ग्रीटिंग्स टू एवरीबडी मिसेस धंजल का मेरा ख्याल है नंबर चेंज हुआ है और चंद्रिका वासंत गुडसाई कहती हैं व्हाट अ स्वीट सॉन्ग और रंजन विनोद ने कहा है कि वो जैन फेस्टिवल था एन नहीं आया टाइप करते हुए कोई बात नहीं आपने एंजॉय किया है ये बड़ी बात है

0: और अब देखते हैं मिछामी दुकलम. अब ये आज का दिन है मेरे ख्याल है माफ़ी मांगने का, जैन धर्म के जैन लोगों के मुताबिक. गुड मॉर्निंग टू ऑल द मिछामी दुकलम टू ऑल, दिनेश शाह ने बताया है. दिनेश शाह ने बहुत ही खूबसूरत एक समीन तस्वीर भेजी है इसके साथ जुड़ी हुई. और ये जो बात है मिसेस धनजल, मुझे पता नहीं कि मेरे मैसेजेस आप तक क्यों नहीं पहुंच रहे. ये मेरा पर्सनल फ़ोन और बाकी नंबर सब ठीक ठाक है, आप ही की लाइन नहीं मिलती. अच्छा नहीं नहीं मिसेस धनजल, ये जो अब मिल रही है इसका मतलब वो भी मिलेगी जिस नंबर से आप चाहें हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं. समय कोस्टा रिका की एक खबर देनी थी. कोस्टा रिका में एक शख्स है, उसका नाम है होजे फ्लोगेज, उनके 8 बच्चे हुए. ठीक है, अब क्या है, 8 बच्चे तो थे ना तब, अब 23 पोते पोतियां हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन 23, 25 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है, 25 पड़ पोतरे पड़ व्हाटएवर, और एक ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है. क्या बात है, इसका मतलब बाबा जी की उम्र क्या होगी फ्लोगेज की, 119 साल, 119 बरस. तो अब खानदान वाले क्या कर रहे हैं, नहीं फंड रेज नहीं कर रहे, वो मसरूफ हैं गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम के साथ. हमें ये दस्तावेज दो, ये कागजात फराहम करो, ये डॉक्यूमेंट दो, वो करो, ताकि हम जो हैं होजे फ्लोगेज को द ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन करार दे सकें. 119, क्या बात है.
1: Kenya's premier Asian mix
2: East FM,
1: celebrated from South Sea, Parklands to Westlands.
2: East FM,
1: Kenya's premier
2: Asian mix.
3: It's 10:22.
4: Hello, future. I would like to tell you.
5: Hi, future. Can I tell you something?
6: Hey, future. There is something I want to tell you.
5: Dear future, I wish to tell you something.
7: This week, we want you to talk to your future generation. We are doing this because we know all you do is to ensure they will have a secure future. And Britam Trust Fund offers that security by managing your assets to ensure they will keep providing for your loved ones even when you are gone.
8: Dear future, I wish to tell you something.
7: Let's secure your family's future this week on Breakfast with Rehmat and Jameel with Britam, your friend for life.
9: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
10: Sirma and Company Advocates is seeking an accomplished litigation advocate. Bachelor's of Law from a recognized university, postgraduate diploma from the Kenya School of Law, admitted as an advocate of the High Court of Kenya with a valid practicing certificate and 2 to 3 years of demonstrable post-admission litigation experience with strong courtroom advocacy, legal research and drafting capabilities is required. Visit myjobsinkenya.com to apply. Sirma and Company Advocates is seeking an experienced conveyancing and commercial advocate. Bachelor's of Law degree from a recognized university, postgraduate diploma from the Kenya School of Law, admitted as an advocate of the High Court of Kenya with a valid practicing certificate and 2 to 3 years of relevant post-admission experience in conveyancing / property law with demonstrable experience handling conveyancing matters for banks and or financial institutions is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
9: Get your dream job today. Log on to MyJobsInKenya.com, Kenya's most effective jobs website. MyJobsInKenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
1: Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
2: East FM.
1: Kenya's premier Asian mix.

0: थैंक यू भाभी।
1: और समय अब जो थोड़े आंसर्स आए हैं मैं वो आपको बताऊं कि शनाज भट्ट ने कहा है सरगर्म, एक्टिव, ओके। अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर, आपने कहा है फुर्तीली, ओके। फिर फुर्तीला इंसान हो सकता है लेकिन फुर्तीली जिंदगी, आई डोंट नो हाउ आप करेंगी मैच। आपने कहा है चुस्त, चुस्त भी इंसान होगा और इसको जिंदगी के साथ कैसे मिलाएंगे वो आप देखेंगे। यास्मिन और मेजर वांजा, बहुत शुक्रिया आपका। और रितु, आई रियली लव दिस सॉन्ग, गॉड ब्लेस यू फॉर प्लेइंग इट, आई मीन रितु गुप्ता। बहुत। और कहा है बिंदु ने फ्रॉम जयपुर, वर्जिश के दैनिक रियाज, ओके। वर्जिश एक्सरसाइज है ना, कि एक्टिव रहना, एक्सरसाइज करते रहना। तो समझ, ये हो गया हमारा पहला काम।
2: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: East FM,
2: celebrating your favorite occasion. East FM,
3: Kenya's premier Asian mix.
2: Asian mix.
3: It's 11:18.
4: Our mall, Karen, is your ultimate day out destination where shopping, dining, entertainment and good times come together.
5: And on Saturday, 19 September, it's about to get even better.
4: The East FM team will be on ground at our mall, bringing you great vibes, fun and plenty of entertainment.
5: Shop, grab a bite, get things done and play a game with East FM and win grand prizes.
4: 19 September at our mall, Karen, off Magadi Road along Avocado Lane.
5: Our mall, your next great day starts here. Join us on 19 September from 12 PM onwards.
6: We unlocked Gavar for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.

सब कमाल कर दिया है दोनों गायकों ने भी जॉली मुखर्जी और लता मंगेशकर और फिर जो म्यूजिक क्रिएट किया है जूही चावला और जैकी श्रॉफ के इस गाने के लिए समझ बहुत जबरदस्त आई थिंक कि यहाँ तो ये अवार्ड विनिंग होगा संगीत ना जाने उनको अवार्ड मिला होगा कि नहीं खैर ये थी जमीन ये था गाना अब जाना है हमने असगर अली वोरा के पास वो कौन है आप कहेंगे असगर अली वोरा की उम्र 81 साल है 81 इनकी एक ये रहते भारत में है अब इनकी जमीन थी इस पर कब्जा कर लिया किसी इन्फ्लुएंशियल शख्स ने इन्फ्लुएंशियल वो होता ना रसूख वाला उसकी बड़ी पहुंच है ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े ताकतवर उनको जानते हैं तो वो इन्फ्लुएंशियल शख्स ने 2011 में इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया खैर असगर अली वोरा के एक स्कूल के मित्र इनके साथ पढ़ते थे वो दोस्त से मुलाकात हो गई आपने कहानी सुनाई दोस्त को कि देखो ऐसा है 2011 से मैं ऐसे झेल रहा हूँ ये मुकदमे पे मुकदमा और क्या तारीख पे तारीख और सुनवाई पे सुनवाई तो मेरा हो नहीं रहा काम तो दोस्त ने कहा कि कोई बात नहीं करेंगे आप हमारे स्कूल में हमारे साथ थे हम इकट्ठे थे तो दोस्त कब काम आएंगे चंद दिनों में कब्जा छुड़वा लिया असगर अली वोरा की जमीन उसको मिल गई है समझ किसने कौन है दोस्त किसने ये काम किया है

जीतू गुप्ता ने कहा है, यूं हम तरस गए अपने घर के वास्ते। या वेरी अप्रोप्रिएट। हालांकि ये आंसर भी ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड आंसर, एक और भी है तो उसको भी ट्राई करें। या सोनल मोदा ने ढूंढ लिया है, गूगल कर लिया इन्होंने। और अमीर अली राणा, परवीन जी नहीं, मैं ये जो क्वेश्चंस हैं मैं गूगल से नहीं लेती अमीर अली, मैं तो किताबों से लेती हूँ। पर बात यह है कि गूगल ने किताबों से इसके आंसर्स डाले हुए हैं, इसको किया हुआ है, किताबों से ही लेते हैं ना, तो इसलिए बगैर समझ हर चीज़ का उनके पास तोड़ है गूगल के पास, इसलिए मेरे लिए ऐसे सवाल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिसको आप गूगल ना कर सके। मैं आवाज़ें जो लेकर आती हूँ वो आप गूगल नहीं कर सकते।

0: और अश्विन अगर मेरे बस में हो तो ये गाना आधे घंटे के बाद एक बार तो मैं सुनाई दूं, हर आधे घंटे के बाद इतना मेरा फेवरेट है, इसको छुपाना भी मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है।
1: आपको बहुत पसंद पड़ गया है।
0: बहुत ही, ये तो मुझे लगता है कि बस ये आखिरी

0: आखिर कर दी है हमारे मौसीकारों ने
1: मौसीकार थे नौशाद अली परवीन जी.
0: अच्छा नौशाद अली
1: और शकील भाई जायू ने
0: क्या बात है
1: और लता मंगेशकर ने गाया.
0: अच्छा या लता
1: और पर्दे पे नलिनी जयवंत ने एक्ट किया.
0: उफ, और क्या चाहिए सारा सामान कामयाबी का था
1: फिल्म की जादू परवीन जी.
0: अच्छा जादू आमीन किस बारे में थी
1: जादू? वो जिप्सी स्टोरी थी, जिप्सी लोग की बात थी.
0: अच्छा
1: और नौशाद अली ने वेस्टर्न म्यूजिक का प्रयोग किया था स्पेशली स्पेनिश. और ऐसा जिप्सी का बैकग्राउंड था.
0: अच्छा
1: नलिनी जयवंत तो अच्छी एक्ट्रेस थी लेकिन उनके सामने सुरेश को खड़ा कर दिया.
0: सुरेश की किस्मत जागी हुई थी उस समय
1: वो ये कारदार फिल्म की थी और कारदार की ये सुरेश फेवरेट थे पर.
0: ओ अच्छा ओके
1: क्योंकि मेरा ख्याल है सस्ते भी मिल जाते थे.
0: या अच्छा उनको कहते होंगे हम आपका चेहरा दिखाएंगे पैसा वैसा छोड़ो
1: लेकिन फिल्म हिट हो गई. टू रीजन पर जी.
0: क्या?
1: एक तो नलिनी जयवंत की एक्टिंग और दूसरा नौशाद का
0: म्यूजिक. ऑफ कोर्स
1: या म्यूजिक और सभी दूसरे गाने शमशाद बेगम ने गाए थे वो भी क्वाइट पॉपुलर हुआ था.
0: अच्छा अच्छा
1: तो फिल्म चली और मजा आ गया.
0: क्या
1: लेकिन इट वॉज ए ट्रेजिक लव स्टोरी.
0: अच्छा ट्रेजेडी भी थी. चलिए क्या बात है क्या बात है. पर ये मुश्किल होता होगा अगर वहाँ शमशाद बेगम भी हैं लता भी हैं तो किसको कौन सा गाना दें?
1: या नलिनी जयवंत सिंग फॉर बोथ.
0: अच्छा
1: ये पार्टी दिसो संग बाय लता द कपल ऑफ सॉन्ग्स व्हिच वाज संग बाय शमशाद बेगम.
0: अच्छा
1: यस वो भी क्वाइट पॉपुलर
0: हुए थे आई एम श्योर
1: हुए थे. सेम यस
0: क्या बात है.
1: आप अभी
0: अभी आई कैन प्ले. हाँ और ये अब मैं आधे घंटे के बाद वापस सुना रही हूँ जब तक लोग हैरान ना हो जाएं कि हो क्या रहा. थैंक यू सविन. हम मजाक कर लेते हैं अश्विन दोषी के साथ भी. अमीर अली राणा कहते हैं कि सभी गूगल से आंसर्स आते हैं तो लेकिन आपने तो गलत दिया है. आपने कहा है कि यूं हम तरस गए डैश डैश के वास्ते और आपने सिर्फ एक डाला है लफ्ज आशियाने के वास्ते पर मैंने दो रखे हैं. यू सी दो ब्लैंक्स हैं और ये ब्लैंक बड़ा अच्छा इस वक्त बड़ा अच्छा कहा है सलमा ने. उन्होंने कहा है कि देखो खाना बदोश जैसे ठिकाने के वास्ते यूं हम तरस गए खाना खाने के वास्ते. क्या बात है कमाल है. आई कांट से इट्स रॉन्ग. खाना खाने के वास्ते हम तरस गए हैं. सोनल मोदा कहते हैं कि मैं कहती हूँ मैंने गूगल नहीं किया. किसी दिलदार बोला फिर मैंने ठीक किया. हाँ किसी ने आंसर दिया फिर मैंने ठीक किया हो सकता है तो आंसर मिल गया. या बिल्कुल अगर ये बात है सोनल आई बिलीव यू. आपकी तस्वीर काफ़ी बार देखी आप सच बोलने वाली लगती हैं. सो करेक्ट वेल डन.
2: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
3: You want it? You got it. Don't wait till your favorite Levi's jeans are gone. The Levi's sale is on with up to 50% off. Make your move to our authentic Levi's stores at Sarit, Westgate, Junction, Two Rivers, and City Mall Nyali. TNC's

0: सन 72 की फिल्म है कंगन। अब देखते हैं अल्फा ओंकार तरुंगाई, कहती मुझे इतनी खुशी हुई है ये सुनकर कि कुछ और भी लोग मेरे जैसे हैं जो रिपीट करवाना चाहते हैं गानों को, गीतों को। कहते जब मेरा कोई फेवरेट गाना होता था तो मैं 3 बार कैसेट पर उसे रिकॉर्ड करती थी, समझ ये। हाँ बिल्कुल, लोग तब 4-4, 5 बार, एक तो ऐसे थे उन्होंने सारी कैसेट में एक ही गाना रिकॉर्ड किया था बार बार उसी गाने को और सुना करते थे, ये था शौक। अल्फा एग्री विद यू। शनाज फ्रॉम तंजानिया, आपने कहा है यूं हम तरस गए घी खाने के वास्ते, आपने खी खाने लिखा है कि क्या है, मुझे नहीं समझ आया, मैंने ये बना दिया कि हम तरस के घी खाने के वास्ते। आप चंद्रिका
1: विन जी पानी पीने के लिए और मिलने के लिए तरस रहे हैं,
0: मिलने के लिए, ओके। और एमएल विश्वकर्मा, मुस्कुराहट और दीदार के वास्ते, मुस्कुराहट और दीदार तो फिर 3 हो गए है ना, हमें 2 चाहिए थे एमएल विश्वकर्मा। और आई वाज सेइंग दैट ऑल द आंसर्स पीपल गिव दे हैव कंसल्टेड गूगल, या ये बात सही है अमीर अली राणा। अच्छा अब देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल क्या था। और ये आए हैं एमएल विश्वकर्मा, चाहत आशियाने के वास्ते, ओके। एमएल विश्वकर्मा सुनिएगा, खाना बदोश जैसे ठिकाने के वास्ते यूं हम तरस गए तुझे पाने के वास्ते, क्यों मैंने कहा था के वास्ते होना चाहिए, तुझे पाने, किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ जिनको मिला है, जिन्होंने ढूंढा है।

और समझिए महनाज की आवाज़ थी। और मंजुला विश्वकर्मा आपने करेक्ट दिया है, ये भी हो सकता था एक घर के वास्ते, क्योंकि दो डालने थे ना, टू ब्लैंक्स थे, एक घर के वास्ते हम तरस गए। और ये इसलिए भी करेक्ट है क्योंकि खाना बदोश ठिकाने के लिए तरसता है, तो वो ढूंढता रहता है सारी उम्र, ठिकाने ही ढूंढता रहता है क्योंकि उसका कोई परमानेंट मुस्तकिल घर नहीं होता।

एक आखिरी पैगाम आया है, किसका है? जैसे कि हम सबसे पहले पहला पढ़ते हैं और सबसे आखिर में है दर्शन सिंह लोटे ऑस्ट्रेलिया में. व्हाट अ लवली सॉन्ग, आई एग्री विद यू. बहुत ही खूबसूरत था जो अभी अभी मैंने आपको सुनाया है. समन इसी के साथ मैं चलती हूँ. आगे आ रही हैं नीलूफर फ्रॉम रेट्रो टू राइट नाउ प्रोग्राम में. उनका साथ दीजिएगा पूरे तीन घंटे. मेरी आपकी मुलाकात कल होगी. अल्लाह हाफिज़.

0: ऐसी है कहानी तो अजनबियों की, हम दोनों की।
1: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: Asian Mix. Asian Mix. East FM.
1: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती।
2: Hey yo, G-Funk.